0: ようあぶれない私やね。あくはほらあらい。あらこうって言うや。あくこたすとくしゃかで。うちはでごうかんでほりよりへ。ないうちはで。これあれよなからへいせいら。言うなぞたいていってはでかい。あくいくふやく。いちんではてでれてろわたてへ。てでて。あくしゃかで。लेकिन अदन है सोया ही से आखा सब दिए गए अदगुआ ही से आईशा खा ले ले को रुकला खा ले सोनी यूं ले गई आगु
1: उत्याले जो
0: इतने के लिए हुआ था गए इतने कौनसा है
2: Then I got the idea.